पतत पुनीत किए खिन पीतर सगला रोग बिदारिया रहाव। गोष्ठ पही साधक संगम काम क्रोध लोभ मारिया सिमर सिमर पूर्ण नारायण संगी सगले तारिया। औखद मंत्र मूल मन एका मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रेन बांछ नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया।

0: नाम रत्ते प्रभ रंग अपार साध गाव है गुण एक निरंकार रहाव साध की शोभा आत्म सकीनी संत बढ़ाई हर जस चीनी अनद संतन कै भगत गोविंद सुख संतन कै बिनसी चिंद जह साध संतन होवह एकत्र तह हर जस गावह नाद कवित साध सभा मह अनद विश्राम ओन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम द्वे कर जोड़ करी अरदास चरण पखार कहां गुणतास प्रभ दयाल कृपाल हजूर नानक जीवै संता धूर तनासरी महला पंजवा सो कत डरै जे खसम समारै डर डर पचे मनमुख वेचारे रहाव सिर ऊपर मात पिता गुरदेव सफल मूर्त जा की निर्मल सेव एक निरंजन जा की रास मिल साध संगत होवत प्रगास जियन का दाता पूर्ण सब ठाए कोट कलेश मिट है हर नाए जन्म मरन सगला दुख नासै गुरमुख जा कै मन तन बासै जिस नो आप लय लड़ लाए दर्ग है मिलै तिसै ही जाए सेई भगत जे साचे भाणे जम काल ते भय निकाणे साचा साहिब सच दरबार कीमत कौन करै बीचार कीमत कौन कहै बीचार कीमत कौन कहै बीचार घट घट अंतर सगल आधार नानक जाचै संत रेणार तनासरी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद घर बाहर तेरा परवासा तू जन कै है संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपाओ हर रंग जन काओ प्रभ अपने का तान जो तू करह कराव है स्वामी सा मसलत प्रवान रहाव पात परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति एह बिद जाति तनासरी महला पंजवा
1: सग जेड़ा विश्राम लाया है चरण सरन नानक दास हर इथे ही विश्राम लगता है पर कई जड़े पाठी ने चरण सरन नानक दास हर हर वो कट्ठा पढ़ के दूजे हर ते विश्राम लाते ने पर टकसाल दे विच चरण सरन नानक दास हर पहले हर ते विश्राम लाया जाता है हर संति ए बिद जाति ए पाठ ते विश्राम ठीक उच्चारण किया गया है
0: तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभ ते पाए कंठ लाए गोर राखे संसार सागर मह जलन न दीने किन न दुत्तर पाखे जिन कै मन साचा विश्वास पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण सरन पूर्ण परमेश्वर अंतरजामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखियो तनासरी महला पंजवा जह जह पेखाओ तह हजूर दूर कतहो ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बीछुड़ै सो संगी गनी है बिनस जाए जो निमख मह सो अल्प सुख भनिय रहाव प्रत पाल अप्याओ दे काश ऊन ना होई सास सास संभालता मेरा प्रभ सोई अछल अशेद अपार प्रभ ऊचा जा का रूप जप जप करह आनंद जन अचरज आनूप सा मत देह दयाल प्रभ जित तुमह अराधा नानक मंगै दान प्रभ रेन पग साधा तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तनह बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज धुन नेह चल राज कमाओ तुम घर आवहो मेरे मीत तुमरे दोखी हर आप निवारै अपदा भई
2: लां दे नाल पाठ है दुलां नहीं है
0: तुमरे दोखी हर आप निवारे तुमरे दोखी हर आप निवारे अपदा भई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके घर मंगल वाज है नित वाजे अपने खसम निवाजे आस थिर रहो डोलहो मत कबहू गुर कै बचन आधार जय जय कार सगल भूमंडल मुख उजल दरबार जिन के जीव तिन ही फेरे आपे भया सहाई

ताकै उत ते उत पेखै उत ताकै उत ते उत पेखै आवै लोभी फेर रहाओ जब लग टूटै नाही मन भरमा तब लग मुक्त ना कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी महला पंजवा नाम गुर दियो है अपने जाकै मस्तक करमा नाम दृढ़ावै नाम जपावै ताका जुग मह धर्मा।

0: बारक को तैसे ही प्रभ पाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा।
1: नायक बोलन लग्या ध्यान रखना है, आड़ा नहीं बोलना चाहिए बिच जिस तरह के बोलिया गया, द्वारा पड़े उठका के नायक।
0: मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा। ईत ऊत जात कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा। संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारे। राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारे। मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहित भाव निद पार उतारे। रहाओ धन सो थान धन ओए भवना जा मह संत बसारे। जन नानक की सरदा पूर हो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा। छड़ाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनस ना कतहू जात। सतगुर पूरै कीनी दात सतगुर पूरै कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कौ भई हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा। पार हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। पार हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी एह टेक मन है साधारी।

0: सहाय हो दास कौ कर कह उदरहो मीत रहाओ। सुनी बेनती ठाकुर मेरा खसमाना कर आप, नानक आनंद भय दुख भागे सदा सदा हर जाप। तनासरी महला पंजवा चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धार्यो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदार्यो। हर जन राखे गुर गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरख बखसंद रहाओ। जो माग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै ईहा ऊहा सच होवै। तनासरी महला पंजवा औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद समाले हाथ दे राखै अपने को। सास सास प्रतिपाले प्रभ स्यो लाग रहो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई धन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास भय साहिब के अचरज देख बडाई, हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूरन पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिस को बिसरै प्राण पत दाता, सोई गन हो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो। अमय सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा, तेरा जन राम नाम रंग जागा। आलस छीज गया सब तन ते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जह जह पेखो तह नारायण सगल घटा महतागा, सगल घटा महतागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूरन होए काम, कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवै जाम, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट न आवै जाम। मुकत वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम, चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सद कुरबान। तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते इकदान, सगल मनोरथ पूरन होव है सिमरो तुमरा नाम। सगल मनोरथ पूरन होव है सिमरो तुमरा नाम। सगल मनोरथ पूरन होव है सिमरो तुमरा नाम रहाओ। चरण तुम्हारे हृदय वास है संतन का संग पावाओ, सोग अगन मह मन ना व्यापै आठ पहर गुण गावाओ। स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापन।
1: जिस तरह पाठ कीता ये पाठ पहला आया नहीं मध्यंत, इसी तरह पैर विच अद्धा जइया नाल बुला के।
0: तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक, मानुख को जाचत श्रम पाईऐ, मानुख को जाचत श्रम पाईऐ प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकार है कोख, कृपा सिंध सेव सच पाईऐ दोवै सुहेले लोक। आन अचार व्योहार है जेते बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण भय काटे मिल साधु बिन से सोक। तनासरी महला पंजवा त्रिसना बुझै हर कै नाम, महा संतोख होवै गुर बचनी प्रभ स्यो।

0: सर्प मनोरथ राज सुख रस साध खुशिया कीर्तन जप नाम जिसकै कर्म लिखिया धुर करता नानक जन के पूरन काम तनासरी महला पंजवा जान की कीनी पार ब्रह्म सार निंदक टिकन ना पावन मूले उड़ गए बेकार रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी कोय न पहुचन हारा जो जो करे जह जह देखो तह तह स्वामी कोय न पहुचन हार जो जो करे अवज्ञा जान की होए गया तत्छार करन हार रखवाला हुआ जा का अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काटे मार
1: तनास्त्री।

0: तीर्थ मजना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोइए गुण है हार परोए किस कौ रोइए विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे भावे आनंद अन दिन हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने।
1: इत्थे एक बेनती है जी, पिछे पाठ आया सी गुण है हार परोए किस कौ रोई है। ए गुणाहां दा वाचक है शब्द, गुणा दा नहीं, गुण नहीं गुणाहां दी गल इत्थे हो रही है। इस करके नूं थोड़ा जिहा भारा करना है पाठ नूं, गुण है नहीं करना, गुण है। हां जी,
2: इह इसे तरह दा पाठ भगत फरीद के श्लोकों में आता है। गगे औंकड़ नन्ना हाए बिहारी अगे पाठ होना दस्या भी जाना वैसे, पर मैं मिला दिया गल हुण चली हुई है। उत्थे पाठ कई बारी असी गुण ही भरिया कर दिने, जद के नन्ना मुक्ता बोले अर्थ विच है गुनाह ही भरिया मैं फिर, गुणहीन भरिया नहीं गुनाह ही भरिया मैं फिर। ते नन्ने नूं कन्ना नहीं लग्या पाठ, उत्थे गुण ही होना है, गो नहीं। सो ऐसे तरह का यह पाठ है, इस ध्यान देना जिथे गुनाह का अर्थ आवे उथे उसे ढंग ना बोलना जी।
0: संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो सा लाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग
2: मते पाठ करिए जी।
0: सा लाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावै सहज नावै बेणी ता संगम सत सते आराध एकंकार।
2: सती पाठ होना चाल मुताबिक
0: फिर संग भावै।
1: एक बेनती होर करनी सी इसे पाठ ते, जिहड़ियां रंगदार पोथियां ने इन्हां विच गग्गे नूं औंकड़ नाणा ते हाहे नूं सिहारी है गुण है हार परोहे, जिहड़ियां लड़ीवार ते पदछेद पोथियां ने उन्हां विच नन्ना है। सो इत्थे पाठ नन्ना ही ठीक है, कई बार लिखण विच मिस प्रिंट हो जांदा है। जिवें असीं गुनाह शब्द लिखदे हां गग्गे नूं औंकड़ नन्ने नूं कन्ना ते हाहा गुनाह लिखदे हां असीं, इस तरह इत्थे पाठ बाई जी नाल सलाह होई है नन्ना ही ठीक है। सो इत्थे गुण है दी थां ते गुण है पाठ कर लेना है। हां जी,
0: गुण है हार परोए किस कौ रोई है विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे भावे आनंद अन दिन हरख साचा दुख किलविख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने। संगत मीत मिलाप पूरा नावनो गावे गावन हार शब्द सुहावनो सा लाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावै सहज नावै बेणी ता संगम सत सते

0: मिलाया कहन कह सब कोए केवड आखिया हौ मूरख नीच अजान समझा साखिया सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मानिया मेरा कूच करह आव है बिखला दे सबद सच्चा गुर मेरा आखन तोट ना भगत भंडारी आखन तोट ना भगत भंडारी भार भुर रहा सोई नानक साच कह बेनंती मन मांजै सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरा नाए मन आनंद है जियो साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा सिरजन हारा जिन सिरजी तिन गोई परवाणा आया हुक्म पठाया फेर न सकै कोई आप कर वेखै सिर सिर लेखै आपे सुरत बुझाई नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई तुम सार अवर न कोए आया जाए सी जियो हुक्मी होए निबेड़ भरम चुकाए सी जियो गुर भरम चुकाए अकथ कहाए सच मह साच समाणा आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाणा सच्ची वडियाई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई नानक साहिब अवर ना दूजा नाम तेरा वडियाई तू सच्चा सिरजनहार अलख सिरंदिया जियो एक साहिब दुए राह वाद वधंदिया जियो दुए राह चलाए हुक्म सबाए जन्म मुआ संसारा जन्म मुआ संसारा नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर भारा हुक्म आया हुक्म ना हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारन हारा हुक्मी आया हुक्म ना बूझै हुक्म सवारन हारा नानक साहिब सबद संझापै साचा सिरजन हारा भगत सोह है दरबार सबद सुहाया जियो बोल है अमृत बाण रसन रसाया जियो रसन रसाए नाम तिसाए गुर कै सबद विकाणे पारस परसै पारस होए जा तेरा मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचै साचे के वा पारी भूख प्यासो आथ क्यों दर जाए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम ध्याए सा जियो सतगुर पूछो जाए नाम ध्याए सा जियो सच नाम ध्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन अनदिन नाम वखाणा करनी कार तुरहो फरमाई आप मुआ मन मारी नानक नाम महारस मीठा त्रिसना नाम निवारी तनासरी छांत महला पहला पिर संग मुठड़िए खबर ना पाया जियो मस्तक लिखियाड़ा लेख मस्तक लिखियाड़ा लेख पुरब कमाया जियो लेख ना मिटाई पुरब कमाया क्या जाना क्या होसी गुणी गुणी अचार नहीं रंग राती गुणी अचार नहीं रंग राती अवगुण बह बह रोसी धन जोबन आक की छाया बिरद भय तिन दिन पुन्या नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछोनिया नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछोनिया बूढ़ी घर घालियो गुर कै पाए चलो साचा नाम ध्याए पाव है सुख महलो हर नाम
1: महलो पाठ ठीक है
0: साचा नाम ध्याए पाव है सुख महलो हर नाम ध्याए ता सुख पाए पेयड़ै दिन चारे निज घर जाए बह सच पाए अन दिन नाल प्यारे अन दिन नाल प्यारे विण भगती घर वास ना होवी सुने अहो लोक सबाए नानक सरसी ता पिर पाए राती साचै नाए पिर धन पावै ता पिर भावै नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर कै सबद विचारी जियो गुर सबद विचारी नाह प्यारी नेव निव भगत करेई गुर सबद विचारी नाह प्यारी नेव निव भगत करेई माया मोह जलाए प्रीतम रस मह रंग करेई प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल भई मन मारी नानक साच वसी सुहागण पिर स्यो प्रीत प्यारी

0: अवगुण आरी कंत विसारी झूठी विदन रैणी
1: छूटी
0: अवगुण आरी कंत विसारी छूटी विदन रैणी गुर शब्द ना मानै फाही फाथी सा धन महल ना पाए नानक आपे आप पछाणै गुरमुख सहज समाए धन सुहागण नार जिन पिर जानिया जियो नाम बिना कूड़ियार कूड़ कमाणिया जियो हर भगत सुहावी साचे भावी पाए भगत प्रभ राती पिर रलियाला जोबन बाला तिसरावै रंग राती पिर रलियाला जोबन बाला तिसरावे रंग राती गुर शब्द विगासी सहो राह वासी फल पाया गुणकारी नानक साच मिलै वडियाई पिर घर सोहै नारी।

0: सदा कृपाल स्वामी नीच थापन हारिया जी जंत सब वस तेरा सगल तेरी सारिया आप करता आप भुगता आप सगल बिचारिया बिनवंत नानक गुण गाए जीवा हर जप जपो बनवारिया तेरा दर्श अपार नाम अमोल नाम अमोलई जियो नित जप है तेरे दास पुरख अतोलई जियो संत रसन बुठा आप तूठा हार रस है सही मातिया गुर चरण लागे महाभागे सदा अन दिन जागया सद सदा सिमरतप्य स्वामी सास सास गुण बोलई
1: सिमरतप्य
0: सद सदा सिमरतप्य स्वामी सास सास गुण बोलई बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई
2: राग तनासरी बाणी भगत कबीर जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद सनक सनंद महेश समाना सेख नाग तेरो मरम ना जाना संत संगत राम हृदय बसाई रहाओ हनुमान सर गरड़ समाना सुरपत नरपत नहीं गुण जाना चार वेद अर सिमरत पुराना कमला पत कवला नहीं जाना कह कबीर सो भरमै नाही पग लग राम रह सरनाही दिन ते पहर पहर ते घरियां आव घटै तन शीजै काल अहेरी फिरै बदक ज्यो कहो कवन बिद कीजै सो दिन आवन लागा मात पिता भाई सुत बनता कहो को है का रहाओ जब लग जोत काया मह बरतै आपा पशु ना बूझै लालच करै जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझै कहत कबीर सुनहो रे प्राणी छोड़हो मन के भरमा केवल नाम जपहो रे प्राणी परहो एक की सरना जो जन पाओ भगत कछ जानै ता काओ अचरज का हो जो जल जल मह पैस न निकसै त्यो टुर मिलो जुलाहो हर के लोगा मैं तौ मत का भूरा जो तन कासी तजह कबीरा रमैया कहा निहोरा रहाओ कहत कबीर सुनहो रे लोई भरम न भूलह कोई क्या काशी क्या उखर मगहर क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जौ होई इंद्र लोक सेव लोक है जैबो ओछे तप कर बाहुर ऐबो क्या मांगो किछ थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाओ सोभा राज बिबै बड़ियाई अंत ना काहू संग सहाई पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इन ते काहो कवने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन तन राम को नामा राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ बनता सुत देह ग्रेह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाहे तेरो काल अवध आई
1: अवधि पाठ कोला ही करना है अवध नहीं करना ठीक होया पाठ
2: अजामल गज गन का पत
3: अजामल
2: गज गन का अजामल गज गन का पतत कर्म कीने तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन भ्रमे तउ लाज ना आई राम नाम शाड़ अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिद निखेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मार कंडे ते को अधिकाई जिन त्रिण तर मूड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्ब करता हाओ बिनस जाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरो करते दुर्योधन से भाई बारह योजन शतर चले था देही गिरज ना खाई सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई सर्ब सोयन की लंका होती रावण से अधिकाई कहा भयो दर बांधे हाथी खेन मह भई पराई।
1: इथे जड़ा पाठ उपर आया है मेरी मेरी कैरव करते दुर्योधन से पाई बारह योजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई। ये पाठ कई थावां ते तुहानूं जदों पद शेर पोथी साहिबानां दे सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे सरूप साहिबानां दे दर्शन करोगे उत्थे कई वेरी गिरजन खाई पाठ भी आउंदा है जिहड़ा गिरज दे नाल नन्ना कट्ठा ला के गिरजन खाई आउंदा है अर्थ दोनां दे बन जांदे आ बारह योजन छत्र चले था देही गिरज न खाई ओदी देही नूं गिरजा ने भी नहीं खाता एक इहदे अर्थ ये बन जाने ਜੇ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਗਿਰਜਾ ਨੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਹਿ ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੇ ਥਾ ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।
3: ਮੂਲ ਪਾਠ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਜਨ ਦੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਬੱਜਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੱਜਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਾਂ ਜੇ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਵੀ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੂਲ ਪਾਠ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ ਮੁੱਖ ਪਾਠ ਇਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ।
2: ਦੁਰਬਾਸਾ ਸਿਉ ਕਰਤ ਠਗੌਰੀ ਜਾਦਵ ਇਹ ਫਲ ਪਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਦੇਉ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦਸ ਬੈ ਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ ਪੰਚਹੋ ਕਾ ਮਿਟ ਨਾਵੋ ਸੱਤਰ ਦੁਏ ਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਖ ਕਉ ਮਾਰ ਕਢਾਵੋ ਪਾਛੈ ਬਹੁਰ ਨ ਆਵਣ ਪਾਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਘੱਟ ਤੇ ਉਚਰੋ ਆਤਮ ਕਉ ਸਮਝਾਵੋ ਰਹਾਓ ਬੱਜਰ ਕੁਠਾਰ ਮੋਹੇ ਹੈ ਛੀਨਾ ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਲੱਗ ਪਾਵੋ ਸੰਤਨ ਕੇ ਹਮ ਉਲਟੇ ਸੇਵਕ ਭਗਤਨ ਤੇ ਡਰ ਪਾਵੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਬ ਹੀ ਛੂਟੋ ਜਉ ਮਾਇਆ ਨਹਿ ਲਪਟਾਵੋ ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਗਰਭ ਜੋਨ ਕਾ ਤੇਹ ਤਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੋ ਇਤ ਕਰ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਜੋ ਜਨ ਤਿੰਨ ਭਉ ਸਗਲ ਚੁਕਾਈਐ ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦੇਉ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਭਰਮ ਹੋ ਇਹ ਸੰਜਮ ਹਰ ਪਾਈਐ ਮਾਰ ਵਾੜ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲਹਾ ਬੇਲ ਬਾਲਹਾ ਕਰਹਲਾ ਜਉ ਕਰੰਕ ਨਿ

0: बालहा मान सरोवर हंसुला जौ तरुणी कौ कंत बालहा त्यो मेरा मन राह मैया बारिक कौ जैसे खीर बालहा चात्रक मुख जैसे जल तरा मछली कौ जैसे नीर बालहा मछली कौ जैसे नीर बालहा त्यो मेरा मन राह मैया साधिक सिद्ध सगल मुन चाह है बिरले काहू डीठुला सगल भवन तेरो नाम बालहा त्यो नामे मन बीठुला पहल पुरिये पुंडरक बना
1: जेड़ा पिछे पाठ आया है बालहा इन पोला ही बोलना है बालहा पाठ नहीं पारा करके नहीं करना बारी बारी कई बारी ये पाठ आया है बब्बे करना लल्ला हाहे करना बालहा पोला ही पाठ करना जिम्मे होया है
2: हाँ जी बालहा दा अर्थ है प्यारा पी आ चीजां इन्हां नूं प्यारियां लगदियां इह उदाहरणां दे के भगत नामदेव जी ने यह सिद्ध किया कि सानू इन्हां वांग परमेश्वर का नाम ही प्यारा है बालहा दा अर्थ हुंदा प्यारा
0: पहल पुरिये पुंडरक बना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानो हर हर नाचंती नाचना
1: कृष्णा पाठ होया सस्से दे पैर विच नन्ना है ध्यान दे नाल वेखो इनू पाठ कृष्णा इसी तरह करना है हां जी
0: पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा

की सोर नर मुन जन तिन हो ते दूर रहाओ दीन का दयाल मादाओ गर्भ प्रहारी चरण सरन नामा बल तिहारी तनासरी भगत रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम सर दीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन मान

हर हर दात करहो प्रभ पावै गुण नानक नाम उमा हराम जैत सरी महला चौथा मिल सत संगत संग गुराहा पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा हर हर कृपा धार मधसूदन मिल सतसंग उमा हराम हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा कर कृपा सतगुरु मिलाहा गुण गाव है गुण बोल है बाणी हर गुण जप उमा हराम सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा हर हर नाम ना पुज है पुजाहा हर हर अतुल तोल अत भारी गुरमत जप उमा हराम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख मैल पाप तोवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम ओ महाराम जैत सरी।

0: करुणापत गहयो चरण आसरा आयो दुख हरण शरण करुणापत गहयो चरण आसरा नाव रूप भयो साध संग भाव निद पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा।
1: हाँ जी, जिहड़ी पंक्ति पढ़ी है आरंभ हुई है नन्ने कन्ना वावे नाल नाव, ते ए तीजा रूप आ गया। जिवें तीर्थ नहावा उत्थे नहाउण दा अर्थ है, ते किते ए नाम दा अर्थ है परमेश्वर दे दा, ते उस तरह पाठ होना, ते इत्थे नाव दा अर्थ है नौका जानी के बेड़ी। सो नाव रूप भयो साध संग, साध संगत बेड़ी दी न्याई है, इस करके नरोल पाठ नाव ही इत्थे शुद्ध पाठ रहेगा जी।
0: जैत सरी महला पंजवा जा कौ पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सगल स्याओ वा कौ ब्याद ना काई रहाओ दिस है सब संग रह है अलेपा नह व्यापै उन माई एक रंग तत् के बेते सतगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई तिन कै संग नानक निसतरियै जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी महला पंजवा गोबिंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मह दीप रहाओ सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल आनूप अनेक बार करो तेह बंदन मनह चढ़ावो धूप हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारा दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक काढ़ ले हो नानक अपने काओ संसार पावक के कूप जैत सरी महला पंजवा कोई जन हारस्यों देवे जोर चरण गहो बकाओ शुभ रसना बीज है प्राण अकोर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचै सुधा संजोर या रसम है मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर आयो शरण दीन दुख भंजन चितवाओ तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर जैत सरी महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत मेह कृपा सिंध करुणा प्रभ धारहौ हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत आनंद पूर्ण पेख देह आन उपाव न जीवत मीना बिन जल मरना तेह हम अनाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करेह चरण कमल नानक आराधै तिस बिन आन ना केह जैत सरी महला पंजवा।
2: ये शब्द दे जिन्ने भी पिछे तो कांत आए ने ओ नेह केह ओ बिंदी सहत आए ने इत्थे बिंदी उचारण करके ही ते शुद्ध उचारण होना है।
0: मन तन जैत सरी महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग भेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ प्रेम ठगौरी जिन कौ पाई तिन रस पियाओ भारी ता की कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी लाए लाए लए लड़ दास जन अपने उदरे उदरन हारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक सरन द्वारे जैत सरी महला पंजवा आए अनेक जन्म ब्रह्म सरणी उदर देह अंध कूपते लावहो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करणी साध संगत कै अंचल लावहो बिखम नदी जाए तरणी सुख संपत माया रस मीठे एह नहीं मन मह धरणी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरणी जैत सरी महला पंजवा हर जन सिमरहौ हिरदय राम हर जन कौ ਅਪਦਾ ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਪੂਰਨ ਦਾਸ ਕੇ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਬਿਨਸਹਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਕੋਟ ਬਿਘਨ ਬਿਨਸਹਿ ਹਰ ਸੇਵਾ ਨਿਹਚਲ ਗੋਵਿੰਦ ਧਾਮ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤ ਕਉ ਭਉ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਆਦਰ ਦੇਵਤ ਜਾਮ ਤਜ ਗੋਪਾਲ ਆਨ ਜੋ ਕਰਨੀ ਸੋਈ ਸੋਈ ਬਿਨਸਤ ਖਾਮ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਗਾਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਬਿਸਰਾਮ
3: ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੁੱਲਿਓ ਮਨ ਮਾਇਆ ਉਰਜਾਇਓ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਓ ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਤੇਹੇ ਤੇਹੇ ਆਪ ਬੰਧਾਇਓ ਰਹਾਓ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੀ ਵਿਖੈ ਰਸ ਰਚਿਓ ਜਸ ਹਰ ਕੋ ਬਿਸਰਾਇਓ ਸੰਗ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਜਾਣਿਓ ਨਾਹਿਨ ਬਨ ਖੋਜਨ ਕਉ ਧਾਇਓ ਰਤਨ ਰਾਮ ਘਟ ਹੀ ਕੇ ਭੀਤਰ ਤਾ ਕੋ ਗਿਆਨ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਜੈਤ ਸਰੀ
1: ਤੱਤਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੱਤਾ ਨੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
3: ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਨਾਵਾ ਹਰ ਜੂ ਰਾਖ ਲੇਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਰ

0: खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत छंत छंत सुन यार हमारे सज्जन इक करो बेनंतिया तिस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खो जंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे इक भोरी दर्शन दीजै नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे इक तिल भी ना तीरी जै प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चादरिक जिवै तिसंतिया जन नानक गुरपूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया यार वे प्रिय हब्बे सखिया मूह कही ना
1: जेहिया ही रहना जी थोड़ा जा दुलामा लग गया इनू प्रिय बन गया प्रिय
0: यार वे प्रिय हब्बे सखिया मूह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़ै होत किस चितेहिया हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हो कद पाई गुण तासा जिनी मैडा लाल रीजाया हो तिस आगे मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूह दस दिखा पिर केहिया यार वे पिर आपन भाणा किछ नीसी छंदा यार वे पिर आपन भाणा किछ नी सी छंदा
1: छंदा नी छंदा पाठ है जी
0: यार वे पिर आपन भाणा किछ

पकड़ ठाकुर होगी, बाह पकड़ ठाकुर हो की दी, गुण अवगण ना पछाणे, गुण हार तै पाया, रंग लाल बनाया, तिस हब्बो किछ सुहांदा, जन नानक धन सुहागण साई, जिस संग पतार वसंदा, यार वे नित सुख सुखे दी, सा मैं पाई, वार लोड़ी दा आया, वजी वादाई, महामंगल रहस थिया, महामंगल रहस थिया, पेर दयाल साध नव रंगिया, वट भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सत संगिया, आसा मनसा सगल पूरी, प्रय अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक सुख सुखे दी, सा मैं गुर मिल पाई। जैत सरी महला पंजवा, जैत सरी महला पंजवा, घर दूजा छंत, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक ऊंचा अगम अपार प्रभ, कथन न जाए अकथ, नानक प्रभ शरणागति, राखन कौ समरथ, छंत ज्यो जान हो त्यो राख, हर प्रभ तेरिया, केते गनो असंख अवगण मेरिया, केते गनो असंख अवगण मेरिया, केते गनो असंख अवगण मेरिया, असंख अवगण खते फेरे, नित प्रत सद भूलिए, मोह मगन बिकराल माया, तो प्रसादी घूलिए, लूक करत बिकार बिखड़े, प्रभ नेर हूं ते नेरिया,

सोए, जल थल महियल पूर रहया, सर्वदाता प्रभतनी, गोपाल गोबिंद अंत नाही, गोपाल गोबिंद अंत नाही, बेअंत गुण ताके क्या गनी, भज सरण स्वामी सुख है गामी, भज सरण स्वामी सुख है गामी, तिस बिना आन न कोए, तिस बिना आन नाहे कोए, बिनवंत नानक दया धार हो, तिस परापत नाम होए, सलोक चित जे चितवया सो मैं पाया, नानक नाम त्याए सुख सवाया, छंत अब मन छूट गया, साधु संग मिले गुरमुख नाम लया, ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किल बिख, बुझी तपत अघानिया, बुझी तपत अघानिया।

रहे अभिमान बूढ़े मरण चीत न आवए पुत्र मित्र व्यवहार बनिता पुत्र मित्र व्यवहार बनिता एह करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है डिठिया किरत करम ना मिटै नानक हर हर नाम धन नहीं खटिया उद्यम करह अनेक हर नाम ना गावही परमह जोन असंख मर जनमह आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु न आवए बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे रतन जन्म हारंत जुए प्रभु आप ना पावही बिनवंत नानक परम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही।

सत जुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो त्रेता तै माण्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कांस किरतार्थ कियो उगर सैन कौ राज अभय भगता जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सत गुर नानक जिन कल राखी मेरी सब ते वड्डा सत गुर नानक जिन कल राखी मेरी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह हम अवगुण भरे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी।

सुखमनी सुखमृत प्रवनाम प्राप कै सिमरन गर्भ न बसे प्राप कै सिमरन काल पर हरे प्रासिम

मंत्र रंग रते रंग एक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर का नाम जन का रूप रंग

ओत पोत जन हर रस राते आठ पैर जन हर हर जपे हर की भक्त मुक्त भव करे पार जाते हर को नाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम की महिमा संत रे दिवस है संत का।

योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया अन्य प्रकार की ये बजतना शरीर कटाए हो में कर राती नहीं तो राम नाम विचार नौखंड पृथ्वी फिरे चर जीव अगन माए हो मत प्राण न्योले कर्म करे बवासन निमक निमक कर शरीर कटावे हर के नाम संसर कचना है मन कामना तीरे दे छुटे सोच करे दिन से।

जिंतु सास स्वार सिगारिया बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध बिरद प्याऊ पर साख सैन ये निर्गुण गुण कछु न बुझे जय प्रसाद तार ऊपर सुख बसे जय प्रसाद पीवे शीतल जला जय प्रसाद पोगे सबरसा

अस्त्र भगत सात की शरण, मिथ्या सरवण पर निंदा सुने, मिथ्या नेत्र पेखत पर तिरियर पाद, मिथ्या चरण पर विकार कोतावे, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा,

गोबिंद भजन बिन ब्रिथे सब काम तन तन ते जन जैकट बसियो हर नाओ रहत अवर कछ अवर कमावत जानन हर प्रभु प्रवीण अवर उपदेश आप न करें।

सुगंध तन लावे जय प्रसाद बसे सुख मंदिर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना जय प्रसाद रंग रस भोग जय प्रसाद पाठ पटम रंडावे जय प्रसाद सुख से सोई जय जय प्रसाद तू सब को माने जय प्रसाद तेरो रहता धर्म प्रभ जी जप दर गए मन पावे जय प्रसाद आरो कंचन देही जय प्रसाद तेरा ओला रहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके जय प्रसाद तुझको ना पहुंचे जय प्रसाद पाज दुर्लभ दे जय प्रसाद अपुखन पैरी जय जय प्रसाद असुहत सवारी जय प्रसाद बाघ मिलक तना जिन तेरी मन बंत बनाई तिसे थे आए जो एक लख जय प्रसाद करे पुन बदान जय प्रसाद तू आचार बिहारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप जय प्रसाद तेरी निकी जात जय प्रसाद तेरी पत्र है जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद परंगत पावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार जय प्रसाद तेरा प्रताप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे जय प्रसाद तू पावे साच जय प्रसाद सब की गत होए आप जपाए जपे सोना

साध के संग मुख उज्ज्वल होते, साध के संग मिटे अपमान, साध के संग बुझे परव नैरा, साध के संग पाए नाम रतन, साध की महिमा बरने कौन प्राणी, साध के संग गोचर मेला, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग सब की रेन, साध के संग न कतुतावे, साध के संग माया ते पिन, साधु के संग साध संग दुश्मन समीत, साध संग के सोने बैर, साध के संग नाही को मंदा, साध के संग नाही अताप, आपे जाने साध बढ़ाई, साध के संग न कबूतावे, साध संग भक्त को चला है, साध के संग बसे थान ऊंचे, साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग पाए नाम निधान, साध के संग सबको लदार है, साधु के संग सोतन पावे, साध संतर रह करे सेवा, साधु के संग पाप पलायन, साध के संग सर्वथान गम, साध के संग नहीं कचकाल, साध के संग कलू कथर है, साध के संग इहां उहां से हिला, जो इच्छे सोई फल पावे, पार ब्रह्म साध रिदवस है, साध के संग सुनो हर नाव, साध के संग न मनते बिसरे, साध के संग लगे प्रमिठा, साध संग पे आज्ञाकारी, साध के संग मिटे सब रोग, साध की महिमा वेद न जाने, साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की शोभा का

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाइया ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मेसर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना आहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेद ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ

मिथ्या नाहि रत्न परस पर तेरे रूप न पेखे नेत्र कर्ण सुने कहूं की निंदा गुर प्रसाद बिख्या पर हरे इंद्री जित पंदोक ते रहत वैष्णो सो जिस उपर सो प्रसन्न कर्म कर थो वे ने कर्म कहूं फल की इच्छा नहीं बाछे मंत्र अंतर सिमरन गोपाल आप दृढ़ है अपना नाम जपावे भगवती भगवंत भक्त का रंग मानते बिन से सगला परम साध संग पापा मल खोवे भगवंत की टहल करे नित नीत और के चरण हृदय बसावे सो पंडित जो मन प्रबोधे राम नाम सारस पीवे हर की कथा हृदय बसावे।

कई कोट पैतीस वासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट आत्म ते अंतर है कई कोट नप्त नाम ते आवे कई कोट पै अभिमानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट पर दर्प कोहेर कई कोट माया श्रमाए जित जित लावो तित तित लगना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट पंकी सर्प पाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट शशि और सूर्य नक्षत्र सगल समग्री अपने सूतार हैं।

परमंत कहावै तन भूमिका जो करे गमान कर कृपा जिसके हृदय गरीब बसावै तन मंतो एक कर गिरबावै बौलस कर मान को ऊपर करे आस सबते आप जाने बलवंत किसे न बदे आप अहंकारी गुरप

जतन करा तम नहीं द्रवे। आपस को जो भला कहावे सर्प की रेंजा का मन होए। जब लग जाने मुझते कछ होए जब जाने मैं किछ करता। जब तारे को बैरी मीत जब लग मो मगन संग माए।

बिना संतोख नहीं को राजे नाम रंग सर्प सुख होए कर्ण करावण आपे आप कर्ण करावण करने हार जैसी दृष्ट करे तैसा होए

0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नाश में पाए,
0: संत के दुखन मतो मलीन,
1: संत
0: के हते को रखे न कोए,
1: संत के दुखन थान प्रस्तु,
0: संत कृपाल कृपा जे करे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन सर्प जवन पाए, संतन के दुखन तृष्णा मैं जलाए,

संत के दुखी को ना ही ठाओ, संत का दुखी अद बीते टूटे, संत के दुखी को ध्यान परमाइए,

0: संत का दुखी सदा सहकाइए,
1: संत का दुखी ना मरे ना जवाइए,
0: संत के दुखी की पूजे ना सन,
1: संत का दुखी चले लड़ा,
0: संत के दुख ना तृष्टा कोए,
1: ऐसा पावे त्रैसा कोई,
0: पे कीर्तन मिटे कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब कर तिस के उकर नहीं हार,
1: सदा सदा तिस को नमस्कार,
0: प्रभु की उसत करो दिन रात,
1: सबकी
0: भरते तिसका किया,
1: ऐसा

जैसा सा तैसा दृष्टाया सोद सोद सोद सीजा जब देखो तब सब किच मूल न किच जन्मे न किच मरे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आपे आप सगल में आप अवनासी नाई किच कांड लख पे पुर प्रताप।

सगल की चिंता जिस मन माए, रे मन मेरे सदा हर जाप, आपन किया कछु न होए, तिस बिन नाहीं तेरा किछ काम, रूप अंतोय नाहीं मोह है।

योग जप जन सदा सदा दिन रहनी कर कृपा जिसको नाम दिया जाके मन गुर की प्रतीत भक्त भक्त सुनिए तेलोए सच करनी सचता की रहते।

अपना सी ब्रह्मन में राख तिस्ते परे नाही किछ कोए आपे बिना आपे दान पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद।

0: नाम के तारे प्रिया साहब बावन
1: नाम के संगुदरे सुन
0: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
1: चौथे पद में सो जन
0: रूप सत जाका सत स्थान करतूत सत सत जाके बाणी सात कर्म जाकी रचना सत सत करनी निर्मल निर्मली सत नाम प्रभु का सुखदाई सात बचन साधु उपदेश सत निर्भु जय जय कोय आप सत की असब सत जिसकी सृट सुकर निहार करते की मित न जाने किया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद

सोसेब जिसे अपरवदा रहे अपने जन का पर्दा टाके अपनी दास को दे बढ़ाई अपनी सेव की आप पत्र रखे प्रभ के सेव को ना पहुंचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया निकी कीरी में कल रखे जिसका शासन काटते आप मान जतन करत बपात मारे न रखे वरना कोए काहे सोच करे रे प्राणी बारंबार बार प्रभ जपिए नाम रतन जन गुरमुख पाया नाम तन नाम रूप रंग नाम रज जो जन तृप्ताने टूटत बैठ सोवत नाम बोलो जज जे बात करे भगत आत्म कह जाए

सफल दर्शन पेकत पनीत पीट संग्राम गुन रवे सुनकर बचन करना गाने पूरा गुरख्यो जा का मंत्र गुण बेअंत कीमत नहीं पाए।

ठाड़ बरताई, जन मरण के मिटेन देसे, पाव चुका निरप हो बसे, जिसका सतन कृपा तारी थित पाए चुके परम गवन, निर्गुण अपसर गुण पियो ही अपने चरित प्रभाव बनाए, हर बिंदु जा नाही कोई।

सतमीत कटम बरबंता राज रंग माया विस्तार आसा तीरथ सवारी जंदी अतस बजे न बेगाना गुर की मत ले आने हर की भक्त करो मनमीत चरण कमल राखो मन माए आप जपो अवरा नाम जपावो सार पूसा तर को नाओ गुन गावत तेरी उतर समैल होए चिंत बसे सुख नाल छाड़ सियान सगली मना हर पूंजी संज करो बिहार सर्व निरंतर एको देख एको जप एको सलाहे एक उसके गुण गाओ अनंत

0: प्रस्थ जाओ
1: नेत्रों
0: पे एक दर्श कोए भगजना के मंत्र रंग एक बस दीजे कर मैया ताकि उपमा कही ना जाए प्रभ बख्शन दीन दयाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल आदपुर कारण करतार जो जो जपे सोए पनीत हम निर्गुण यार नीचे जान सर बैकुंठ मुक्त मोख पाए अनकराज भोग वड़े आई।

सुन समाद जब इसका पण चिन्ह न जापत जब अपने आप पार ब्रह्म अपन खेला भरती जा जब उपत प्राप केवल तनी जब एक के हर गम अपार जब निर्गुण प्रभ से सुभाए जब आपे आप अपनी जो तरह अपन चलता आप करने हार अबनासी सुख अपने आसन जब पूर्ण करता प्रसोए जब अभगित गोचर प्रवेका जब नाथ निरंजन गोचर गा दे अपने आप आप ही अचर जा जय निर्मल पुरख पुरख पतोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे कन क्रावण करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जब सर्व कला पे प्रवीण जब अपन आप उतारे जय अपन ऊंचे अपने आप नेरा बेसमन बिस्मर बिस्माद जय अचल अचेद पे समाया आपस को आप देश जय एक भगवंता जय अपने आप पतियारा बोबिया तू चे ऊंचा जय प्रचय प्रपंच कार आपन तपई कहावत आल जाल माया जंजाल दुख सुख माने अपमान अपन के लाभ कर देख जय भगत भगत है आप दो पाका आपे तनी आपे कौतक करे अनचोज।

विचार बंधन तोर पाए निर्वैर ए लोग सुखी है पर लोग सहेले साध संग मिल करो आनंद राम नाम तत् करो विचार।

0: सगल समग्री एक कट माहे नौनी दमृत प्रभ का नाम है सुन समाद नाद तिन देखा जी साप दिखाए सो अंतर सो बार अनंत तरण माए आकाश प्याल
1: सर्व

0: चपेंगे।
1: मानवेंद्र गजेंद्र नरा रब जान तलोक को राज करेंगे।
0: कोट स्नान गजाय दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे।
1: ब्रह्मेश्वर बिशन सचिव पतांत पसे जम्पाल परेंगे।
0: जय नर श्री पथ के प्रश्न।

0: तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइयां
0: राग रतन परवार परियां शब्द गावणे।

0: करते रह।
1: साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया।
0: कर शान सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पजाइया।
1: सदा कुरबान कीता गुर वेटो जिस दी आए बड़े आईया।
0: कह नानक सुनो संतो सब तरो।

करहो कृपा ब्रह्म चूकई, मैं सुमत देहो समझाए, जोगी सर पावह नहीं, तो गुण कथन अपार, प्रेम भगत का कारण, कहो रविदास चमार, सो कहो टल गोर सेविया, अहनिस सहज सुबाए, दर्शन परसिया गुरु का, जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहु कुरसहु।

मानुख की टेक बिरथी सब जान देवन को एक है भगवान इतने को हाजरी दर प्रवान होइया पुलना दिखे मां सतगुरु कृपा करन सबना दियां हाजरियां दर प्रवान करन दरों करों गुरसिखी जीवन की दात गुरु चरणा नाल प्रेम अते प्रतीत बख्शिश करन बुलाओ फतेह को वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

गुरु साहब की हजूरी च जुड़ बैठी संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें कि जी तुहानूं सारिआं नूं पता ही आ वी अज तो 3 साल पहलां भाई हरदीप सिंह निज्जर दा गुरद्वारा साहब की पार्किंग लॉट दे विच कतल हो गया सीगा। ते उस केस दे विच जो करिंदे सी जिन्हां ने वह कम किया उन्हां नूं पिछले साल सज़ा मिल चुकी है, पर कुछ गल्लां ने जिहड़ियां कदे भी जनतक नहीं होईआं। ते इसे वास्ते असीं अज इत्थे आ। एक तो यह है कि जो कतल होया किस तरह होया, जदों कोई इन्वेस्टिगेशन खत्म होंदी है उस तो मुड़ के एक पब्लिक इंक्वायरी कराई जा सकती होंदी है जिदे विच सारे तत्थ बाहर आउंदे ने वी उन्हां नूं किन्हां ने भेजिया ते उन्हां ने क्यों कतल कीता। यह गल सरकार जां अदालत ने हजे तक बाहर नशर नहीं कीती है। दूजी गल यह है कि सन 2024 दे विच कनेडा की सरकार ने एक पार्लीमेंटरी स्टडी शुरू की सी भी कनेडा दीआं इलैक्शनां दे विच किहड़ी किहड़ी सरकार दखल अंदाजी करती है। उहदे विच रशिया, चाइना, इंडिया ते ईरान का नाम सीगा, पर वह जिहड़ी स्टडी आ वह मुड़ के कदे पूरी नहीं की गई। तो जबकि वह एक पबलिक स्टडी आ, कदे भी उहदी जो जानकारी है वह जनतक नहीं की गई। दूजी साडी पिटीशन दे विच मता यह आ भी वह जिहड़ी स्टडी आ पूरी की जाए ते वह गल जनतक की जाए। तीजा यह आ जो जनतक की जाए। तीजी यही गल आ भी इन्हां दोवां गल्लां दे विच कतल केस दे विच ते जिहड़ी दूजी पार्लीमेंटरी स्टडी आ इलैक्शनां दे विच दखल अंदाजी दी, उहनां विच जिन्हां जिन्हां दे नाम आउंदे आ जां जो सही इन्वेस्टिगेशन जदों पूरी हो जांदी आ वह जनतक की जाए, जो कि सरकार ने हजे नहीं की। असीं जदों भी साइन कराउंदे आ संगतां दा सवाल हुंदा वी इहदे विच सानूं कोई खतरा तां नहीं है किसे तरां दा, तां इस तरां दी कोई गल नहीं हैगी। इह जिहड़ी पिटीशन आ इह अपने लोकल MP ते MLA नूं जांदी आ, इह कनेडा दे कानून दे दायरे दे विच ही रहिंदी आ। तां करके साडी इही बेनती है कि जिवें कि अज दे दिन इसे वेले सरी दे विच गुरद्वारा दशमेश दरबार ते ब्रैम्पटन दे विच डिक्सी गुरद्वारे दे विच वी असीं पिटीशनां साइन करवा रहे हां ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਈਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ

груди. गुर बिन कोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। जीता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराहि तेहा हौ करी वखियान। बेसुमार

0: मन बस करना अखा समाट पाया जांदा है, मन बस करना अखा समाट पाया जांदा है।
1: आलियां बिच भेजे सतगुर किवें है दानियां नू, हो जाए रहमत तेरी मिल जाए माण न माणियां नू, हो जाए रहमत तेरी।

0: विधि चंद फुरमाया मैं घोड़े लैण लई चल लाहौर शहर बिच आया मैं घोड़े लैण लई चल लाहौर शहर बिच आया
1: ध्यान पाए गुरु दा धार ध्यान पाए गुरु दा पूरा

0: बार का मैं बन लिया हूं, मैं सच्चे सतगुरु दे जाके का घोड़िया नू पाऊं, मैं सच्चे सतगुरु दे जाके का घोड़िया नू पाऊं।
1: है सेवा करने दा, है सेवा करने दा मेरे मन विच चो

टी धरी गवरी गावे आसावरी तै पाचे संत भी आलापी श्री राग स्यो पंचो थापी सालू सारग सागरा और गौंड गौपीर अष्ट पुत्र श्री राग के गौंड कुंभ हामीरा खष्ट मेघ राग वै गावै पंचो संग बरंगन लावै सोरठ गौण मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुन गुनी ऊचे सुर सुहोपन किनी मेघ राग स्यों पांचो चीनी बैरा तर गज तर केदारा जबली तर नट औजल तारा।

हारो आवा गवन सिर दिया तू थिर करण हारो जमण मरना आए गया बदक जियो बिकारो भूडड़ै नाम विसारिया बूढ़ै क्या तिसचारो गुण छोड़ बिखल दिया अवगुण कावण जारो सदड़े आए तिना जानिया हुक्म सचे करतारो नारी पुरख विशुन्या विछुड़िया मेलन हारो रूप ना जाने सोहनी है हुक्म बद्दी सिरकारो बालक बिरध ना जाने।

जानी अड़ा बंद पठाया है, लिखे अड़ा लेख न मेटी है, दर हाकार अड़ा आया है, हाकारा आया जात सपाया, रुन्ने रोवण हारे, पुत भाई पाती जे रोव है, प्रीतम अत प्यारे, भै रोव गुणसार समाले, को मरे ना मुया नाले, नानक जुग जुग जान सिजाना, रोवे सच समाले, भै रोव गुणसार समाले, को मरे ना मुया नाले, नानक जुग जुग जान सिजाना, रोवे सच समाले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक महला नौवां। गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कौ नानक हर भजमना, जेह बिद जल कौ मीन। बिखे

जागत पिखारी फिरत है सबको दाता राम, कौ नानक मन सिमर ते पूरन हो वह काम।

तऊ न हर रस लीना। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे, नानक थिर हर भगत है तेह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है।

जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाय कह नानक अब ओट हार, गज ज्यों हो सहाय बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय संग सखा सब तज

जिसका सब सदारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई, नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां।

सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवा, तन मन थीवै हरिया, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिल।

अष्टपुत्र श्री राग के गुंड कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वह गाव है पंचो संग बरंगन लाव है सोरठ गोंड मला।

सबै पुत्र रागन के 18 10 20। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। आराम कली साध एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जगदाता सोए भगत वशल तिहो लोए जियो। गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो। अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम त्यावहे। प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया।

पैज राखो हर जन है केरी, हर देहो नाम निरंजनो, अंत चल दिया होए बेली, जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर धार कृपा सतगुर मिलाया, धन धन कह सा वास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरा हर भाणा आओ मैं पास जियो। हर भाणा गुर पाया, मेरा हर प्रभ करे सा वास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा पावे, आनंद अनहद वजह वाजे, हर आप गल मेलावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा, मन वेखो हो कर निरजास जियो। तुर लिखिया परवाना फिरे नाही, गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुर भाणे अपने, बह परिवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोव सी, सो मैं मूल ना पाया। मित पैजै मित बिगसै, जिस मित की पैज पावे, तुसी विचार देखो पुत भाई, हर सतगुरु पैनावे। सतगुरु पर तख होंदे, बैराज आप टिकाया, सब सिख बंधप पुत भाई, रामदास पैरी पाया। अंते सतगुर बोलिया, मैं पिछे कीर्तन करे हो निर्वाण जियो। केसो गोपाल पंडित सद्यो हो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबाण हर रंग गुर भावे। पिंड पत्तल किरिया दीवा, फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुरख जे बोलिया, गुर सिखा मन लई रजाए जियो। मोहरी पुत

तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा में कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा

सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रहना खुआर हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे जो शरदा कर सेम दे गुर पार उतारन खंडा जाके हाथ में कलगी सो है।

हर अगम अगम अपारा सब त्याव है सब त्यावै तुझे हसचे सिजन आरा सब जियो तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व नरंतर जी हरे को पुरख समाना एक दाते एक भिखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन्ह अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुना आग बखाना जो सेव है तुझी जन नानक दिन कुरबाना हर त्याव है तुझी से जन जग मैं सुखवासी से मुक्ता भै जिन हर त्या जी तिन तुटी जमकी फासी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका भाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हजी ते हर हर रूप समासी

तेरी भगता तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगता तेरे भगत सदां तो जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक रहे हर पूजा जी तप तप है जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ हैं बहु सिमरत साह जी कर क्रिया खट करम करंता

आई दुष्ट दोगते लियो बचाई सवैया पाए गए जलते तुमरे तपते कुआं तरे नियानियो राम रही पुराण कुरान अनेक है मत एक न मानियो सिमर सतर बेसब बो भेद कह अमेक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो ही बकानियो धोरा सगल द्वाल को छाड़ गए गहो तुहारो द्वार बहे गए की लाजस गोविंद दास द्वार सगल द्वार को छाड़ गए गहो तुहारो द्वार भाई गें की लाजस गोविंद दास तुहार रामकली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद नंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तै पाया सहज से ती मनवजिया वाधाइया राग रत्न परवार परिया शब्द गावनी आईया सब तो गावो हरी केरा मन जनी बसाया कह नानक नंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार हो करे तेरा काज सब सवारना सबना गलां सम्रत स्वामी सो क्यों मन विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस देश सो पावे सदा सिसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजी शब्द कनेरे कह नान सच्चे साहिब क्या नहीं करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुखमन आए वसिया जिन इच्छा सब बुझाइया सदा कुर्बान किता गुरबिट हो जिस

ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास है होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय कर नौ निद आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवे पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थाई होए सहाय। दसाही पातशाहियां दे प्रतख स्वरूप जुगो जुग अटल धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब।